0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना,

भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना।

si se va a quedar.

अभी को मुक्ति में भेज, आप पाप के वरदान से।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्म जीवन दी, तो ब्रह्म जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, याद है वायदा, याद है आका दिलाओ, याद है अच्छा दिला रे, अच्छा याद है पक्का कि कभी कभी भूल जाते हैं। जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही वायदा याद है, कितना सहज करके दिए। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार। परिवार में भी एक दो में आत्मक सने नहीं, आत्मक सने बाप दादा याद दिला रही है, जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने पढ़े उमंग उत्साह से, बाप के आगे से कहा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी है ना, कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहती है, रोरियान करती है ना, तो कहती है मेरा मन परेशान रहता है, खजाना, वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना, बाप दादा वायदे याद दिला रहे, तेरे में मेरा नहीं करो, बाप कहते आप सबको परमात्म खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किस शब्दों में मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी होई, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके आप हमारा, ये वायदा है ना। किसानों को सदा स्वप्रत और सर्व आत्माओं के प्रत कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाए। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ, सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्व शक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय पर मार कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रह नहीं है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दे। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, उसमें मिलके नमाज के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिरा ना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, आत्मा का तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है तो वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी देखते हो, बाप दादा ने पहले भी सदा आप ब्रह्म परिवार का एक एक का फर्ज है। शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताती है, पहले भी बताया तो कहाँ कहाँ संगठन कभी कभी पर दर्शन पर चिंतन और पर मत की तरफ आकर्षित हो जाते। अभी इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो, वो एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है ब्राह्मण का स्वभाव है। पर पर दर्शन नहीं, ये पर काट दो। ये तीनों बहुत नुकसान देते, इसीलिए अपना स्वमान सदा ये याद रखो कि मुझ ब्रह्मन आत्मा का स्वमानी है पर उपकारी। तो दूसरे सीजन में बाप दादा हर हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने चाहिए। हो सकता है हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक। तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना, आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। दूसरे को नहीं देखता, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदलेंगे, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ना पहाड़ हटेगा पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प जलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, इशारा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्वपरि

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

பச்சை கோட்டரில்லை.

अपने स्वमान

का स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में।

सात के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही। देख रहे हो जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है।

Amén. Este dos ateo. A mí. Exíganme. Osa. Anadisorme.

Peace.

to me. Abrazo a Rob Deco.

Listening.

Nej, Sunder.

Isso.

Second.

अपने स्वमान में

Unser Yoga hier.

Just sort of got the grave.

चाहे गुरु बने।

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जा, देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज अधिकारी हो ना, उस

七。

Pap se prapto.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पर ही चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

しくない。アフギン、欲しい。

अच्छा।

ょうか。

0: सोचते हो ना, सबसे आगे थे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है यहाँ, सरकारी दुनिया है ना, सरकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन हो सकता है हो भी रहा है, हो रहा है कैसे कि पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनो में समाया हुआ देते। तो सबसे सभी बहने तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनो में बैठे हो, नोरे रतनो। सुना पीछे वालों ने, दूर नहीं हो समीप, शरीर पीछे बैठे है लेकिन आत्मा सबसे समीप। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो नजदीक वालों को इस स्थूल नैनो से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनो से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनो में समाले थे। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चे भी एकाग्रता के स्थिति में स्थित होना चाहते अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी।

विश्वास।

Sorry.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से
2: भटकती हुई आत्माओं को

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
0: अच्छा सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपका नाम सभी डबल विदेशों को

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते। बाप भी मर्ज कर

कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिखिला दे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा, आप बाप को ढूंढ सके भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? साथ देखी बाप ने, काला है गोरा है, श्याम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा। मेरा है ये देखा। तुम बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है। कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी। और बाप को खुशी है
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Sir.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

episode.

Llenos de tensión.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, परसेंटेज लेके बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है? सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज। क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, बाप दादा, सर्व बच्चों को जय मधुबन में सन्मुख है, जय देश विदेश में याद में सुन रही है, देख रही है, उन सबको जहां भी बैठी है, लेकिन दिल से सन्मुख चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रही है। आप सभी भी हर्षित हो रही हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और ये दिल का सदा का सच्चा हर्ष सर।

0: और विश्व के सदा खुश रहने का सेवा में सदा उपस्थित रहते सदा सेवादारी हूँ। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हूँ। हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पाठ बजाने वाले
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सपने में बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बात फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी दवाई

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम पर सभी को आना ही है। इसलिए करते जाओ, खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी। दिल शिकस्त नहीं हो, योग श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी कि आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विशे।

Sí.

Kill kebab bijai deh.

सभी बच्चों को भी।

கேட்டுக்கொள்ளேன்.

जल्दी से जल्दी त्याग करना अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्यों?

0: चलते फिरते ते ही अब मान नहीं बनना। यही बेहद का फेरा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साधारण अज्ञान ने आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

That's...

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज दे दे। अगर मनन करो Yeah.

Don't give up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे हो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी समय के प्रमाण विश्व की जो दुखी अशांत हो रही है न आत्माओं को अच्छा।

Jesus.

Monsters.

ese pato se mordido de lado.

साइट सीन को

0: साइट सीन देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते।

0: जैसे बाप के लिए कहते हैं, ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्म
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और जान जान चार चांद लगाओ। ये बात

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का प्यार जन्म भी साथ है, और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में, हर एक बच्चा मग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के कंबाइंड कंबाइंड रहते हो ना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा टीचर, साथ उठो। अच्छा टीचर, सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो। सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सुधई वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ। बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत दिलाओ। मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क में भी कर्म में भी मत लो। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बेफिक्र मत चल,
4: रिपीट करो इधर।
3: बेफिक्र मत चल।
5: बेफिक्र बैठ।
3: कारण क्या है बेफिक्र क्यों है?
4: कल क्या है ये फिक्र क्यों है?
3: दिल बड़ी है,
4: दिल बड़ी है।
6: बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
3: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
5: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
7: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: I'm sick.

घर के पीछे नहीं सोचो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से, ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना? तैयार हो? बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी कर इतना तो है ही, नहीं तो कैसे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Thank you. ऐसे भी नहीं, तो माया भी ऐसे भी। बीच ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अटेंशन रखो दो बात का, एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से क्या है गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है। और आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्मसार है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्चे दिल से छोटी बातें बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल जगह तो इसीलिए मांगता था। उस नजर से आपको नहीं देखी, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। जो बाप दादा एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, वो मिल नहीं सके। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है। तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कब मिलता। कारण क्या, बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा का जी हाजर, बाबा का लो दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं कर, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते हैं। साफ दिल सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन सदा जी करो क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बन क्लियर नहीं करने दे। ये जरूर करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Typique.
1: Can't see the other one.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा चतुर छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल रही, तो प्रैक्टिकल में बेकारी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय बिना मिलना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन चतुर छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट पर गया, समाज पर गया, सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो। हम दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल काटी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां, कितने मजे से सब्जियां

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्यों? पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सनेही, पाप का सनेही, परिवार का सनेही सुतेही बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सनेह के फिरती से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप। सुने का वायुमंडल बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
3: जी।

ahora.

shit.

0: उसके लिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Dead Baca. Kisah Bako Tigre. Ye Raja Sabha. इस समय रुआने फकर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह
1: बच्चों को देख खुश होते हैं।

Ιατρικό και αφαρακοτεμένο.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और फिर दी भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Let's go.

Sa

Beep.

0: Sampan bane, saman bane.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: This is a

Thank you.

there.

ごちそう。

Let's

0: Shake. Polemon Sabata.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: एजुकेशन चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, जिला जिला
2: छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा, वाचा सेवा।

叫我，可惜。

Que se han hecho por puro 10.

कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखते

0: bellísima. Esa Farash.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Percentage yoga keys.

0: जीवन में प्रभाव इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: हसुरास।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Bref.

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मालिक सदा मालिक होता है।
2: कितने वर्षों से जुड़ा
1: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चों

for der skete. Fishes.

कुछ

इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगन check.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See?

see.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की साकर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। लेकिन मैं सुस्ता से सुना के खत्म, एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते हैं। आप ही चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वैसे

kära.

酒。

Our body.

enough.

bien.

Touché.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Last number maybe।

c'est bon.

सबसे प्यार ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठ

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

समझते हो?

विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को किसे

Jam 11 el teo. See?

सर्व के पूर्वज सबके हो। ऐसे

समझते हो ऐसा नशा है नशा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मुश्किल

0: Sneaker, flag, janda, leravi, aur dil aur geet gaye, dil mein geet gaye. Hamara baba aa gaya, meetha baba aa gaya. Yehi chahte जल्दी जल्दी वर्तक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो? बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात आद में, तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो कह की भाषण नहीं करो, कह ज्यादा कौन करते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी क्यों, क्यों की क्यों नहीं लगा? हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे हो सकता है भाषा परिवर्तन। कह नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो वो क्यों लगेंगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुशारत के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे है किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Despiértete.

0: स्पर्श करने, एक ही बात का फॉलो किया तो सहज
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

को लास्ट बच्चे से भी प्यार

0: copii. Pap, tata. Și aici este satul Ranger. Pice, pice. N-ai Ranger.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये रोज हरे को काटनी चाहिए, ऐसे नहीं हम बिजी है बीच में, समय पर तो समय एक सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते और स्वयं भी अभ्यास कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। दो चार सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विधेय बनने में टाइम लग जाता और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब जाए उसी समय हो जाएगा, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है, अचानक के पेपर में ये विधेयी पन का अभ्यास बहुत आवश्यक है, ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विधेय बनने का पुरुषार्थ करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी, फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा, अभ्यास ही होगा ना, एक सेकंड में न्यारे होने का, तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाए, सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ी। संस्कार मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं दे, लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगे अगर विधेय बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो, जानबूझ के माया कमजोर होंगे, चाहे सुबह में चाहे संबंध में आने में चाहे संकल्प शक्ति में वृद्धि में वायुमंडल के प्रभाव में, बात में कमजोर होंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Love you.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना।
3: Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

फिक्र नहीं, लेकिन फकोर जाना।

सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म।

0: जीवन कितने खुशनुमा बन जाती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

किससे भी प्रस्तुति में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कभी किस बात की है,

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी is

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Please।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नवनिर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रैल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है कि परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाज मत रख दो, तो बाप दादा भी लाज मत रखते, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को दीवार नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से है, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्योंकि चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे। बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Saral, yete saral, vani. Saral, vritti, saral, drishti.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माए हो, विदेशी आत्माए नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और पढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी जाके पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। शुभ भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत मारने वाले भी माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वो बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती तो वो भी नरम हो जाते, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदतें खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे है, लेकिन माता जी इतना प्रभाव तो बदले होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक है माता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू को याद करते हो थक गए अभी क्या करे थको नहीं।
3: Yeah.

सफर सारे कल्प में मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना। तो बाप दादा भी साखी होके देखते साथ नहीं होगा लेकिन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पद दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jesse.

险。

Sunny.

सदा अपने को
Sissa Massiamo.

Kiss some.

0: जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय सने के अनुभव को याद करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से कहती है

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता। अपमान इस रूप में आता है, तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी की।

Thank you.

0: Nagy kicsenemben bár. Babko szogátédó.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और ये आत्माओं को मानसिक परेशानियों से चुराने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन को टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन की परेशानी की आग बुझाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, अबो में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, मैं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहीं चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम कर आपका है। डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है, ना विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग वृद्धि उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर सब पर शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा, समझा।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती, एक तो देहबान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है, तीसठ जन्म का, फिर देहबान
2: उसके कला
1: साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगाओ। कोई विशेषता या अपने या और किसकी, अपमान तो नहीं है। कई बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती। दिल खुश, चेहरा खुश,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में हद के संस्कार
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। बाप दादा।

sais qu'il y avait le temps. Pardon. Tu crois que t'es... Damn it.

0: स्वपन मात्र भी कोई कमजोरी हो उसको छुट्टी देना। तो जैसे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

amica. Snap.

Money.

safe.

trop dur. Oscar. Mon ami. Anbogaro. Jesse. Watch me.

Mr. Rouhani, exorcise me.

0: precisely. Sada tickling jaise sharir ki exercise sharir ko tundrast rakhti hai aise exercise मन को शक्तिशाली रखेगा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये exercise
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: खांसी के लिए
4: दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी
3: गुलजार दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल और प्रसाद रेड्डी।
5: ये तो कल पहले इनो का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाफ्ताबाद दृष्टांत देवे कि VIP सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर स्थूल शरीरधारी, इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्तापन, अगर संस्कार को देख कहीं बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्यों कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख के भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी, वाणी बहुत अच्छी,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो

Feeling.

ईशान कौन होगा? जहां किचरा होगा वहीं परेशान होंगे ना। तो उस समय

sama.

Jesus, mano, me tengo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे

Pop Tata. Extra. बच्चों के मन में खुशी की कर।

起来，把头发没安呐，而他不下人。Man.

0: papi. Papa aquí, pate. Sentí esto, pato.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: यज्ञ में हर एक पाठ अपना अपना आवश्यक, कोई भी एक निमित्त सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हरे का पाठ अपना अपना महत्व होगा, कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये पाप का वरदान एक एक कामन पाठधारी को भी, जैसे भंडारी वाले है तो कामन पाठ, लेकिन भंडारी वाला नहीं हो तो काम नहीं चले, सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले, क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ। यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन सामना करने की शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी हर सोन एक पुशारत

0: कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े, जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो, ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारिया देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। अगर एक पॉइंट रही हुई है गीता का भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होगी ना। जब ये सिद्ध हो तब कहे भगवान आ गया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों कर बाप दादा कुछ ready।

व्यतीत करना। अब वो सब

साधारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखति वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबसे श्रेष्ठ रंग है

Echt?

우체대요. You.

जैसे बाप को कंबाइंड बनाने से

इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो इस धूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप पाप के संग के रंग से होली बन जाते।

una charretera.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: समान संस्कार सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल
1: ऐसे विश्व में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

So

स्वप्न निश्चय।

जैसे पाप

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

हर कदम में पद्मों की
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: वश में विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अधिकारी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्वापाड़ी वर्तन से जाए।

真笨哦。Eso.

some.

awesome.

इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख रहे हैं? भ्रष्टाचार का बोर कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। श्रेष्ठाचार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Tren.

0: Satana. Oh, Satana. Cushy. Que fechista.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर वन

Gracias.

Chubby. Chạy đi về. Sruff. Gaga. Sakra ka rang bhi lag jata. Alla pehle par. हो जाएंगे दोनों यान बहुत हो गई है तो समझते हैं समय पर सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन दे दे लेकिन या अटेंशन का नोट तो होता है लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रवासी चाल हो जाती है वो रिजल्ट ज्यादा है

अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए मेजॉरिटी पुराने के लिस्ट में और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपने विशेष

0: Ağlamıştı. Yok bir bursa da ne ya da biç biç be bir bursa bana sarıldı. İsliye sada demişince bot attention dedi diye un koto bab dada diver porşarı diyor ki listri beyrattı attention dedi lekin कुछ समय दीवार कुछ समय बीच में फिर पेपर आते उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।